0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होता है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन छ सधैं।

बेबी मुझको पता है तेरा मन है बड़ा, तभी फ्लोर पे तेरी बेड में हूँ खड़ा। ऐसे बैठे बैठे तू शोल्डर ना हिला, थोड़ा पैर उठा सानू नच के वगा।

बीमारी बढ़ गया होती है ऐसी बढ़ेगी भी फटो करती है ऐसे तो ऐसी घूमे नहीं बनता जो देखा तुझे सफल हो गया जैसे तो जो आगे आगे कहा बने लागे आगे अब करना कोई क्लियर खुल के

सड़कों से छोड़े जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चुन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में।

0: असौ साल त ढुक्क नआरे बत्ती
1: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्दर लक्टी रहट बरा पानी बस्त बेर अस्तिम कहाँ र सिक्दा त सोचो त लट्टी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाइ लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्ब डिक ठिकम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारी बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बह्य ढ्यार जोखिम रहत उह मार बह्या से बचकला पहिले हाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुई लगोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: नमस्कार तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन छ सधैं बाज्दै

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बता, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है। तो तुम क्या करोगे, रोल क्या है तुम्हारा?